0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स। योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
3: सो मेनी अटैक्स,
2: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
2: Hard facts.
3: War-struck country.
2: Hard questions.
3: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine.
4: In France. In Italy.
3: At Srinagar.
4: I am Srinagar.
3: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom, only on NDTV.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
8: हाई रेट चेक द ऑडियो, हाई रेट चेक द ऑडियो।
9: लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट।
10: ब्रेकिंग स्टोरी, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
11: वी हैव गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर।
12: व्हाट इज इन योर लेटर?
11: यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स।
13: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
14: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
15: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
13: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
14: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
16: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
17: Really?
16: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
18: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत।

0: आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है।
1: कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
0: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे हरभजन सिंह, तो अब खुले में बोल रहे हैं।
1: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
0: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी?
1: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
0: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
1: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
0: बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सीख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट। ठीक ठीक तो लगा लो,
1: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
0: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता।
1: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया।
0: अगर कॉमेडियन भगवंत मान, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो, क्या कहे?
1: जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
6: थैंक यू।
5: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं, भगवंत मान कितने फैसले लेते
6: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
5: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
6: कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
5: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
6: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
5: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी?
6: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
5: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
6: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
5: बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट। ठीक ठीक तो लगा लो,
6: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
5: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता।
6: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया।
5: अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो क्या कहे?
6: जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
9: रियली
8: Fashion that made you gag, films that made you fangirl, art that made it to the gram, and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
10: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
11: Let's do it, let's do it, let's start.
12: Big news that we're breaking first here on NDTV.
13: We know for sure that they have, you know, confirmed their support to him.
12: We've got a picture of the letter.
14: The breaking story, we're jumping straight into it.
15: They do not want to be part of an experiment.
16: Show around and then come to me at the Nehru Stadium in Chennai.
17: Unconditional support.
13: Giant killer of TVK is here with us.
18: We've got Mr. Dinakaran with us here.
19: Veera, why aren't you also dancing?
13: Vijay is coming out, TVK chief.
12: Big breaking story here on NDTV. Nobody else has these details. Thank you for all the support. Thank you for the viewership. Thank you for the love.
7: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
20: Big news coming in as far as Tushar Sharma's death case is concerned. The SIT has now been questioning Tushar's husband Samarth Singh. They've grilled him for 3 hours. The husband claims that Tushar

0: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
1: थैंक यू।
0: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं, भगवंत मान कितने फैसले लेते?
1: सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
0: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
1: कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
0: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
1: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
0: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी?
1: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
0: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
1: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
0: बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसी लग रही है कि इस वक्त एक सीख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट। ठीक ठीक तो लगा लो,
1: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
0: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता।
1: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया।
0: अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो, क्या कहे?
1: जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: राजा मसाला।
5: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्रिशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
6: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
7: अ ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
8: वी हैव बीन फाइटिंग नॉनस्टॉप, वी आर नॉट स्टॉपिंग अंटिल द जस्टिस इज सर्व्ड।
9: मिसिंग, वेयर इज योर सन? लेट मी आस्क यू दैट पॉइंटेड क्वेश्चन।
10: ही इज रेडी टू फेस ऑल द क्वेश्चंस बट ही हैज टू एग्जॉस्ट हिज लीगल रेमेडीज।
11: ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन, समर सिंह हैज फाइनली सरेंडर्ड। दीज आर फ्रेश विजुअल्स कमिंग ऑन योर स्क्रीन फर्स्ट ऑन एनडीटीवी।
12: क्या कह रहे हैं आप, सरेंडर करने आए हो या सरेंडर नहीं करने जा रहे हो?
11: NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case. Joining us live now for the first time is Brigendra Singh, senior advocate, appearing for Samarth Singh.
13: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
11: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.
14: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
15: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
16: थैंक यू।
15: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते
17: हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं, भगवंत मान कितने फैसले लेते
18: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
15: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
18: कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
15: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
18: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
15: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी?
18: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
15: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
18: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
15: बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो, बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट। ठीक ठीक तो लगा लो,
18: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
15: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता।
18: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया।
15: अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो, क्या कहे?
18: जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।
19: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
20: Big news coming in as far as Trisha Sharma's death case is concerned. The SIT has now been questioning Trisha's husband Samarth Singh. They've grilled him for 3 hours. The husband claims that Trisha was distressed post her abortion. Now the SIT is claiming that he is trying to mislead the investigators. Whether it's his laptop, his phone, his passport, all have been seized by the SIT. We have, in fact, my colleague

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: The situation in the Strait of Hormuz right yes. now and Iran, the last 48 hours have been tense. Is there a sense that strikes are imminent?
6: Iran can never have a nuclear weapon. And so the issues of enrichment and the highly enriched uranium have to be confronted. The straits cannot continue to be closed.
5: The import of American oil is important for India, particularly because of the situation.
6: India wants to diversify its energy. We want to diversify the countries we export to.
5: There is also an issue of visas for Indians. They have to come back to India for green cards now. Why has America taken this decision?
6: Well, it's not about India. It's about the whole world. Anytime you reform a system, there's going to be some disruptions. There's going to be some hiccups.
5: How did the meeting with the Prime Minister go? What did you discuss?
7: Relationship between the President, President Trump, and Prime Minister Modi. I think that always makes it easier to have these meetings because of the personal affinity they have to one another.
5: Thank you very much for
6: doing this
5: interview. Thank
6: you.
5: Thank you.
6: Thank you very much.
8: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
9: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
10: थैंक यू।
9: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं और भगवंत मान कितने फैसले लेते?
10: सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
9: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
10: कहते देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
9: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
10: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
9: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी?
10: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
9: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज़्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
10: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
9: बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसी लग रही है कि इस वक्त एक सिख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट। ठीक ठीक तो लगा लो।
10: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
9: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता।
10: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया।
9: अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो क्या कहे?
10: जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।
11: Big news coming in as far as Tushar Sharma's death case is concerned. The SIT has now been questioning Tushar's husband, Samarth Singh. They've grilled him for 3 hours. The husband claims that Tushar was distressed post her abortion. Now, the SIT is claiming that he is trying to mislead the investigators. Whether it's his laptop, his phone, his passport, all have been seized by the SIT. We have, my colleague Tanushka joining us in order... Tejri joining us in order to get us the latest on this. Tejri, take us through the details that have emerged in the case so far. First, he was on the run. He, tried to surrender. Eventually, it was the Jaipur police that arrested him. He's been in the custody. They have 7 days custody. The SIT has been grilling him, questioning him. They've recreated the crime scene as well. But, you know, time and again, what's really coming up is his demeanor. How, you know, he appears to be very calm, very composed. On the other side, how, you know, the officials are saying he's really not cooperating and that he's not really

0: And while shifting our focus back here in New Delhi, the Delhi High Court has refused to grant any interim protection to the Delhi Gymkhana Club against the centre's eviction notice. However, the court recorded the centre's assurance that no eviction will take place without due procedure and prior notice. The matter was heard after club members and staff associations challenged the government's order directing the club to hand over possession of its Lutyens Delhi property by June 5th. That's not going to happen anytime soon, while also issuing summons on the petitions. The High Court has now declined to pass any interim stay, noting the centre statement that any action, if taken, will strictly follow legal procedure. The centre has maintained that the move is linked to termination of the lease and not forcible eviction, which was ordered earlier.
1: Club notice aa jayega ki 5 June ko band hoga ya 5 tarikh tak ke government ke hawale kar dena chahte hain ya notice jo bhi aaya हमारे को तो इस बारे संदर्भ में किसी चीज से कोई हमारे को बताया नहीं गया। जैसे ही खबर हमारे स्टाफ में लगी तो सारा स्टाफ मायूस में है, शोक में है कि हमारा फैमिली का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते, भारत सरकार से पूछना चाहते, हमारे 600 एम्प्लॉय उसके फैमिली लगा करके 6,500 परिवार है, क्या होगा उनका।
2: अचानक आके हमसे कहा जी कल 5 जून को कोर्ट का ऑर्डर है, कल बंद हो रहा है। तो बहुत धक्का लग रहा है। यहाँ पे नौकरी करने के हमसे 35-40 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ नहीं गया। अचानक ऐसे भेजा गया, कल अचानक हमें कल पता लगा। अब सब परेशान है, कुछ लोग यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 20 साल से, हमने खुद 36-37 साल हो गए हमें जॉब करते, हम कहाँ जाएंगे, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे।
3: मेरी उम्र देख रहे हो कैसा हो गई, काम करते 25-30 सालों से काम करते करते ये हो गया। अब ये क्लब चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। हमारे बच्चे वैसे ही रोड पे आ रखे, हमारी झुग्गियां वैसे ही टूट रही है। 26 तारीख को
4: रोजी रोटी छिन जाएगी तो कहाँ जाएंगे, हम भीख मांगने लायक भी नहीं रहे अब ये बुढ़ापे में। हमें कुछ नहीं है, हम इतना हाथ जोड़ना चाहते कि क्लब को आप यहाँ से बंद मत करो, हमें कहीं मत भेजो। इस टाइम पर हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हमारी उम्र हो चुकी है।
5: तो हम तो चाहते हैं कि ये कल्चर को मेंटेन करना चाहिए, मतलब ऐसी जगहों को एक्वायर करके पब्लिक पर्पस का बहाना करके या किसी और रीजन देकर इनको अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आप सिक्योरिटी रीजन तो पहले से मतलब जब से आज़ादी, जब से मतलब वो जिमखाना है तो कोई सिक्योरिटी रीजन तो आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है वहाँ से। प्लस पब्लिक पर्पस होता है तो दिल्ली बहुत बड़ा है, आप अपने पब्लिक पर्पस को कहीं और भी वो एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन यह है कि वो जिमखाना में आपस में काफ़ी तनाव था, मेंबर्स के बीच में जो कमेटी के लोग थे उनमें काफी डिस्प्यूट्स था, और सब एलाइट लोग हैं वहाँ तो उनको तो मजा आता है सब ये काम करने में ना।
6: गलत निर्णय है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। सब लोग जानते हैं कि जिमखाना का एक इतिहास है, 100 साल पुराना वो क्लब है, वहाँ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड हैं वो, उसके अलावा भी हर सेक्शन से लोग वहाँ मेंबर हैं। और इस तरह से एकाएक नोटिस दे देना ये उचित नहीं है, और डिफेंस के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर ये मुनासिब नहीं है।
0: Well, so I'll tell you why the center wants Gymkhana land back. First, reason number one, 27.2-acre club right at the heart of Lutyens Delhi in a highly sensitive and strategic area. Reason number two, needed for defense infrastructure as well. Apart from that, also required for other important public security purposes. Reason number four, required for urgent institutional needs as well. A need for integrated public interest.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: ब्रेकिंग स्टोरी विद जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट
2: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर व्हाट इज इन योर लेटर यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स
3: 21 डेज इन कश्मीर अनफिल्टर्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स आई सॉ एंड ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड
2: वेरी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल देयर वर सम चिल्ड्रन हुव लॉस्ट लिम्स इन द शेलिंग फॉर अ कंट्री That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
3: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
2: The line of control, Ship Arur, NDTV.
1: Higher end, check the audio, higher end, check the audio.
2: Let's do it, let's start. Big news that we're breaking first here on NDTV.
4: We know for sure that they have, you know, confirmed their support to him.
2: We've got a picture of the letter.
1: The breaking story, we're jumping straight into it.
5: They do not want to be part of an experiment.
1: Show around and then come to me.
2: At the Nehru Stadium in Chennai.
6: Unconditional support.
4: Crime killer of TVK is here with us.
1: We've got Mr. Dinakaran with us here.
2: Veera, why aren't you also dancing?
4: Vijay is coming now, TVK chief.
2: Big breaking story here on NDTV. Nobody else has these details. Thank you for all the support. Thank you for the viewership. Thank you for the love.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात
8: वाओ मामा क्या स्वाद है
7: अरे मेरे राजा
9: सबका राजा आर प्योर मसाला
2: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान
10: थैंक यू
2: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है मास्क है आरोप लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं और भगवान मान कितने फैसले लेते
10: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
2: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है संदीप पाठक थे वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है ब्रेन ट्रस्ट है वो थोड़ा कमजोर पड़ता है
10: कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है
2: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं
10: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे
2: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी
10: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं गारंटियां पूरी हो रही हैं
2: सरकार आपकी पैसा कमा रही है उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो
10: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है
2: बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसी लग रही है कि इस वक्त एक सिख फेस को आगे करेंगे क्या लिख रहे हो बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट ठीक ठीक तो लगा लो
10: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है इतना ही रेट लगेगा
2: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है लेकिन जो मास्टरमाइंड है जो सरगना है वो नहीं पकड़ा जाता
10: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की है मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया
2: अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो क्या कहे
10: जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: CBI team has reached the Bhopal residence of Samarth.
13: In other news, as the auto industry moves rapidly towards electric and software-defined vehicles,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: Navneeti Sharma, the father of Trisha, joins me one-on-one for the first time.
6: शुरू में देखने को मिल गया था कि criminal mindset है। भेड़िये ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। They are chameleon people.
7: A brother, Major Harshit, speaks out for the first time on national television.
8: We have been fighting non-stop. We are not stopping until the justice is served.
9: Miss Singh, where is your son? Let me ask you that pointed question.
10: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
11: Breaking news coming in. Samar Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your
12: screen.
11: First on NDTV. NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case. Joining us live now for the first time is Nagendra Singh, senior advocate, appearing for Samar Singh.
13: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
11: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.
14: NDTV के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
15: थैंक यू।
14: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं और भगवंत मान कितने फैसले लेते
15: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
14: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
15: कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
14: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
15: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
14: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी?
15: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
14: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
15: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
14: बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट। ठीक ठीक तो लगा लो।
15: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
14: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टर माइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता।
15: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time.
1: शुरू में देखने को मिल गया था कि criminal mindset है. भेड़िये ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर. They are chameleon people.
2: A brother, Major Harshit, speaks out for the first time on national television.
3: We have been fighting non-stop. We are not stopping until the justice is served.
4: Missing, where is your son? Let me ask you that pointed question.
5: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
2: Breaking news coming in. Samar Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your screen. First on NDTV. NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case. Joining us live now for the first time is Nagendra Singh, senior advocate, appearing for Samar Singh.
6: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
2: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.
0: NDTV के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान.
7: थैंक यू.
0: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है. आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं. केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं और भगवंत मान कितने फैसले लेते
7: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं.
0: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक. एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है. संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे. अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
7: कहते हैं देखो, पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है.
0: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे. हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं.
7: नहीं, चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे.
0: फिर से

0: All right, the process has begun, but no final decision taken. It is inconclusive. That's what Veera is explaining to the viewers. Very important perspective out there from Veera. What do you expect now? We are being told by our reporters that the Chief Minister has already left for the airport and perhaps on his way to Bengaluru. We don't know what the next move of TKS would be, perhaps also turn to Bengaluru. But could there be a series of meetings? Could there be perhaps a timeline of meetings until a decision? Because over the last many months and years, there have been several twists and turns where a similar situation has been witnessed. Inconclusive decision making, but then the DK camp has been trying its best to take the big spot.
1: But remember, it's more important, as I point out, Aditya, about the cabinet reshuffle. In this power tussle between DK Shivkumar and Siddaramaiah,
0: yes,
1: a chief minister wanting to assess his own government midterm and cabinet reshuffle, because there are many other aspirants. You need to go through that process of churning, especially in a state as socially complex as Karnataka. And I think that limbo is what's hurting the Congress. And I think that decision needs to be categorical. Even if it's going to be Siddaramaiah, there will be a decision on cabinet reshuffle and other matters that needs to come up. I think we'll get clarity in, let's say, the next couple of hours in terms of what really transpired in the meeting. But I think this time, the whole issue of taking it to this level by the Congress High Command, inviting the Chief Minister to Delhi, shows that there is a categorical intent to give out clarity on the road ahead over the next 2 years as far as Karnataka is concerned.
0: All right. A serious thought being given to the road ahead. That's what Veera is trying to dissect from the meeting that has happened, even though inconclusive. We are joined by Jainendra and, of course, Manoranjan Bharti also with him. What's the latest, Jainendra? Aap kya bata sakte hain hame? Aapke jo Congress ke sources hain aur jo Baba se baat kar rahe hain, wo kya bata rahe hain ki abhi bhi talmel mein kuch kami hai ya kuch bata rahe hain ki abhi aur vartalap hoga aur uske baad hi bata jayega ki kya ho sakta hai?
2: देखिए, कुछ बातें जो बैठक के बाद साफ है कि मीटिंग इनकंक्लूसिव रही है. चार एजेंडे मुख्य तौर पर थे, लीडरशिप चेंज, कैबिनेट रीशफल, राज्यसभा, एमएलसी. मीटिंग के बाद ऑफिशियल ब्रीफिंग में कहा गया है कि हमने राज्यसभा और एमएलसी पर बात की है, बाकी किसी अटकलों पर बात नहीं की है. लेकिन लीडरशिप चेंज को लेकर के इनकार भी नहीं किया है. कैबिनेट रीशफल लेकर जब मैंने मुख्यमंत्री से पूछा, उन्होंने कहा कि ये तो एजेंडे में ही नहीं आया. हैरान करता है, 6 घंटे आपकी बात हुई और केवल 3 वैकेंसी है राज्यसभा की, उसमें एक तो खरगे जी रिटायर हो रहे हैं, वो वापस जाएंगे, केवल 2 वैकेंसी के लिए 6 घंटे, समझ में नहीं आता. और एमएलसी क्या राहुल गांधी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, ये भी समझ में नहीं आता. लेकिन यहाँ आप तालमेल की कमी बता रहे, थोड़ी तालमेल की कमी मेरे और बाबा के बीच में भी है. मुझे सोर्स बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान लीडरशिप चेंज चाहता है और सिद्धरमैया को मीटिंग के दौरान कहा गया है कि आप जो है वो रास्ता खाली करिए. हालांकि क्या इसको लेकर वो माने हैं नहीं माने हैं, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं. लेकिन बाबा का कहना है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा. बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाबा सही समझते हैं, बताइए बाबा.
3: देखिए, एक तो जो ऑफिशियल ब्रीफिंग के बाद कहा गया नो स्पेकुलेशन, तो उसको राजनीति में बहुत ज़्यादा जो आप स्पेकुलेट करने लगते हैं तो गलत भी साबित हो जाते हैं. दिक्कत यहाँ पर ये है कि 108 MLA जो हैं वो सिद्धरमैया के साथ हैं, उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो जब मीटिंग हुई थी पिछली बार विधायकों की, तो वो उनके पास है, मैंने कांग्रेस आला कमान के पास है. ओबीसी से आते हैं, एक ही ओबीसी मुख्यमंत्री है, उसको आप क्यों हटाएंगे जब राहुल गांधी इतना ओबीसी और दलित को जो है आगे लाने की बात करते हैं. और तीसरी बात ये है कि डीके शिवकुमार के पास तो सब कुछ है, अभी डिप्टी सीएम है, उनके पास 2 अच्छा मंत्रालय है, सिंचाई विभाग है, साथ में बेंगलोर डेवलपमेंट का विभाग है, और वो पिछले 6 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं. डीके शिवकुमार के साथ दिक्कत जानते हैं कहाँ पे आ गई. यदि पिछले लोकसभा चुनाव में डीके शिवकुमार ने 28 में से कांग्रेस को 15 से ज्यादा सीटें दिलवा दी होती, तो आज डीके शिवकुमार को कोई मुख्यमंत्री.
2: लेकिन वो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष की कैसे है? हालांकि खुद उनके भाई हार गए.
3: हाँ, भाई हार गए. देखिए, जब उनके भाई हार गए ना, तो फिर उनका चिप्स थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है. हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत संकट मोचक हैं, सब कुछ करते हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस में परफॉर्मेंस भी
2: देखा लगता है. कोई सस्पेंस नहीं, कोई चेंज नहीं
3: फिलहाल, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है. फिर 3 महीने बाद हम आके आएंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है पहली प्राथमिकता कांग्रेस आला कमान की है कि जो तीसरी सीट आपकी राज्यसभा की फंसी हुई है उसको जीता जाए, क्योंकि एक एक सीट वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक दो सीट कम हो गई ना तो खड़गे साहब को दिक्कत हो जाएगी लीडर ऑफ अपोजिशन में, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो अभी कांग्रेस यदि मजबूती से लड़ती है तो एक सीट का राज्यसभा में फायदा होने वाला, फिलहाल मुझे लगता है इसके लिए रोक दिया गया ये रिस्पेक्ट।
2: ठीक है, तो सुना आपने बाबा को, लेकिन मैं बाबा की अनुमति से ही जो मेरे सोर्स कह रहे हैं मैं फिलहाल उस पर यकीन कर रहा हूं कि पिक्चर अभी बाकी है। और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के अभी जो फैसला है, चर्चा तो आज हो गई है, जिसे जाना है उसे जाने को कहा भी गया है, क्या वो मानेंगे और नहीं मानेंगे तो लीडरशिप क्या करेगा, इसको लेकर अभी पिक्चर बाकी है।
0: ज्ञानेंद्र, पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर NDTV पर ही लोग देखते रहेंगे, और बाबा और आप तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र बाबा से ये भी पूछे कि क्या अब कैबिनेट रिशफल हो सकता है, ऐसी कोई संभावना है कि कर्नाटक में कैबिनेट रिशफल हो, क्योंकि राज्यसभा को लेकर भी चर्चा तो रही ही है, उसमें कौन जाएगा इस पर भी कोई टिप्पणी आ रही है कांग्रेस आलाकमान से?
2: आदित्य, इससे पहले कि मैं बाबा के पास जाऊं, मैंने खुद ये सवाल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री से पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट रिशफल का एजेंडा आया ही नहीं, चर्चा ही नहीं हुई कैबिनेट रिशफल पर, और ये बहुत हैरानी की बात है। मुख्यमंत्री 6 महीने से कांग्रेस लीडरशिप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कैबिनेट रिशफल करने के लिए, 3 साल से कैबिनेट रिशफल नहीं हुई है और सारे MLAs परेशान है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जवाब उनको देते नहीं बन रहा, और कैबिनेट रिशफल सबसे बड़ी डिमांड है। तमाम जो मुख्यमंत्री की रेस सिद्धारमैया और DK के बीच, सिद्धारमैया तो खैर कुर्सी पर ही है लेकिन बाकी MLAs की नजर CM की कुर्सी पर नहीं है, उनकी नजर मंत्री के पद पर है और वो रिशफल चाहते हैं। रिशफल जब होगा 80% से ज्यादा लोग बदले जाएंगे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री कहकर गए। मेरे साथ बाबा हैं, बाबा ये कैबिनेट रिशफल कब होगा और क्यों नहीं हो रहा?
3: मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ, कैबिनेट रिशफल अभी क्यों करना जब आपको राज्यसभा के लिए एक एक MLA का वोट चाहिए?
2: उसके बाद होगा
3: ना, आप समझिए, एक एक MLA का आपको वोट चाहिए। आपने आज आप मंत्री हैं, कल मैंने रिशफल में आपको हरा दिया, परसों आप भाग गए इलेक्शन के दिन, बीमार पड़ गए, कहीं और चले गए, फिर क्या होगा? वहाँ तो एक एक सीट फंसी हुई है, एक सीट तो अब कांग्रेस अध्यक्ष को मिलेगा, दूसरी सीट के लिए मैं अभी भी कह देता हूँ कि DK शिव कुमार को अब उनके भाई के लिए ऑफर की गई है, तीसरी सीट जो है वो इन सब की जिम्मेवारी है कि मिलकर जितवाएं, उसी तरह वहाँ MLC की सीट जो है वो वहाँ पर जिम्मेवारी है। आज आपने कैबिनेट रिशफल कर दिए, 4 लोग को कैबिनेट से ड्रॉप कर दिए, और वो यदि नाराज हो गए और वो वोटिंग के दिन नहीं आए तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रायोरिटी ये है कि पहले आप ये दोनों काम कर लो, उसके बाद आप कैबिनेट रिशफल करो, उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बदलो, वो तो कभी भी बदल सकते हो आप, उसमें क्या दिक्कत है? यदि राहुल गांधी कह दे तो सीधारमैया को इस्तीफा देने में एक मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि पहले सीधारमैया ने कहा था कि वो चाहते हैं कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो जाए,
2: वो तो हो गए।
3: वो अब उनका कहना कि अब वो राज्यसभा में भी कहीं भी भेज दोगे आप, वो चले आएंगे, लेकिन दिक्कत ये वही आती है कि एक OBC को, एक जिसका MLA का सपोर्ट है, फिर आप कहोगे MLA का सपोर्ट तो आप हमें बना दो तो कल हमारे पक्ष में आ जाएंगे MLA, ये बात भी है, लेकिन कास्ट कम्बिनेशन भी देखना पड़ता है।
2: वो कलेगा जिस समुदाय से आते हैं शिवकुमार, वो भी OBC है,
3: ये देखना पड़ेगा आपको कि वहाँ पे OBC है या नहीं है कर्नाटक में, लेकिन ये कुड़वा तो होते ही है, और ये कास्ट जो पूरे इंडिया में कुर्मी के नाम से जाना जाता है उससे पहचान, तो यही सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने फिलहाल यहाँ टाला। यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कर्नाटक है, कर्नाटक में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी अपना इंटरेस्ट है, वो आते हैं, जीवन भर वो उन्होंने वहीं की राजनीति की है, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, ये जलेबी है, ये स्टेट, ये वो केरल नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया और वहाँ हो जाएगा, ये जलेबी में से आपको रास्ता निकाल,
2: बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन बाबा की पारखी नजरें जो है सब कुछ देख पा रही हैं, और बाबा स्पष्ट हैं कि कोई चेंज नहीं होने जा रहा, और कैबिनेट रिशफल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आने वाले 2 हफ्ते के बाद ही वहाँ पर चुनाव होने हैं राज्यसभा के, और इसीलिए कैबिनेट रिशफल पर चर्चा नहीं हुई है, ये बाबा का कहना है। और लेकिन जो कयास हैं लीडरशिप चेंज को लेकर के वो बदस्तूर हैं, और जो लीडरशिप चेंज का एक फॉर्मूला है संभावित, उसके तहत ये जैसे बाबा कह रहे हैं कि एक राज्यसभा खड़गे होंगे, एक राज्यसभा DK शिवकुमार के भाई DK सुरेश, जो बेंगलुरु रूरल से सांसद थे, हार गए पिछली बार, उनको भेजा जा सकता है। हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि वो एक राज्यसभा की सीट सिद्धारमैया को भी ऑफर की जा सकती है, बशर्ते कि वो इस्तीफा देने को तैयार हो जाए, रास्ता बनाने को तैयार हो जाए। तो कर्नाटक का ड्रामा, कर्नाटक का नाटक अभी उस पर से पर्दा नहीं हटाए, कांग्रेस आलाकमान अपनी तरफ से जो अटकलें हैं, स्पेकुलेशन है, उस पर विराम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम सोर्सेज ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी इस कहानी को खत्म मत मानिए, अभी इसमें कुछ डेवलपमेंट्स बाकी हैं।
0: जी, हमारे साथ बने रहिए जैनेंद्र, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हमें समझ आ रहा है कांग्रेस के लिए अभी राज्यसभा के चुनाव हैं, उसके बाद हो सकता है कि कैबिनेट का रिशफल हो, और उसके बाद हो सकता है कि एक सोल्यूशन जो है इसको लेकर निकले, अभी तक जो है सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और जो इस टसल को सुबह से खबरों में देख रहे हैं, उनके लिए जैनेन्द्र अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये टसल इतनी गंभीर क्यों है, और पिछले 3 सालों में लगातार हमने देखा बार बार ऐसी मुहिम रही डीके कैंप की कि वो अपना जो है नुमाइंदगी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लगाएं, लेकिन क्यों ये नहीं हो पा रहा है, कितनी बार ऐसी जो है संभावनाएं बनी लेकिन जो ये कॉम्बिनेशंस हैं डीके शिवकुमार के फेवर में नहीं गए।

0: जैनेन्द्र के साथ हम जुड़ेंगे. जैनेन्द्र कंटिन्यूज टू जॉइन अस अलॉन्ग विद मनोरंजन भारती फ्रॉम न्यू दिल्ली, वेयर द क्रूशियल मीटिंग ऑफ द कांग्रेस हाई कमांड अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका वर अंडरवे. लेट्स गो अक्रॉस टू जैनेन्द्र वंस अगेन, हु जॉइन्स अस फ्रॉम न्यू दिल्ली वेयर द क्रूशियल मीटिंग वाज अंडरवे. द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैव जस्ट लेफ्ट. जैनेन्द्र, जो लोग हमें अभी जुड़ रहे हैं सुबह से, इन अटकलों को सुन रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप बता सकें साफ शब्दों में कि ये इतनी बड़ी गंभीर जो है टसल क्यों रही पिछले 3 साल से लगातार, जो डीके कैंप है बार बार अपनी नुमाइंदगी लगाता रहा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाया. ओके, जैनेन्द्र विल जॉइन अस इन अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ. देयर इज सम टेक्निकल डिले इन द कम्युनिकेशन बट दिस इज द बिग डेवलपमेंट कमिंग एट दिस आवर इन कर्नाटका. देयर विल बी अ स्टेटस को एज ऑफ नाउ. देयर इज नो फाइनल डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय द कांग्रेस हाई कमांड आफ्टर अ मैराथन 6 आवर्स मीटिंग अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार. एज ऑफ नाउ Siddaramaiah continues to be the Chief Minister of Karnataka. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar also continues in the position. Speaking to the reporters, they did not reveal much either about the final decision of the High Command or what will happen next. Will there be any kind of a cabinet reshuffle, berths being changed in the cabinet of Siddaramaiah? What will happen in the road to the Rajya Sabha elections? That is very, very crucial. At least 3 seats at stake there in Karnataka for the Congress party. But it does seem like that there is some kind of a message that has been conveyed to the top brass of the Congress party in Karnataka. And as of now, the status quo is going to only continue. The Game of Thrones in Karnataka only getting more mysterious, only getting more interesting by the day. We will be following that story very, very closely. But the big development at this hour, we are continuously monitoring the movements of D.K. Shivakumar and Siddaramaiah, trying to find out, will they speak to the media, reveal details of what was discussed inside that important, crucial meeting that took place in New Delhi. And now this is what we are picking up. Sources are telling us the Congress to decide on the leadership after the Rajya Sabha polls. Big breaking news coming here on NDTV. This is regarding Siddaramaiah and the team planning to leave Delhi. That's what we are picking up. No intimation has been given of any more meetings in the national capital. Decision on the leadership will be in fact revealed post the Rajya Sabha elections in the state of Karnataka. Big development at this hour, breaking news here on NDTV in regard to the meeting that was taking place in Delhi. Siddaramaiah and his team are planning to leave Delhi immediately after that crucial meeting. No intimation of any more meetings in the national capital, and decision on the leadership will only be revealed post the Rajya Sabha elections. Deepak continues to join us from Bengaluru. Deepak, what's the latest that you're picking up? You've been tracking D.K. Shivakumar and Siddaramaiah very, very closely on this Game of Thrones. Will we know what kind of action will they take? Has there been a decision, or have they left this for the Rajya Sabha polls and post that a final call will be taken?
1: Well, Aditi, I'm just picking up all arrangements are being made, protocols are being set for the Chief Minister's departure from Delhi. This would essentially mean that they have not intimated him about any more meeting. Whether that will change in the next half hour, we don't know, because things are quite dynamic at this point in time. But just about 5 minutes ago, I did get a confirmation that they are doing everything now to return to Bengaluru. That means whatever conversation that they needed to have is done. Today, when Mr. K.C. Venugopal said the conversation was all about Rajya Sabha seats, we should say that yes, there was a bit of a conversation on the Rajya Sabha. Well, if you think that it was 6 hours of Rajya Sabha conversations, probably not. There was a discussion about the leadership issue. Now, what I'm learning is that this discussion as of now will not continue or be prolonged any further, and any sort of decision that needs to be announced formally is likely to happen once the Rajya Sabha elections are over. So it's quite interesting, and especially when you consider the larger scheme of things here, if we've been putting this out, one of the options that could have been presented to Mr. Siddaramaiah is to take up the position of leader of the opposition. And if he is elected as a Rajya Sabha member, and if an announcement does come in to actually put his name, then things will become amply clear that this is an option that they're really looking at. But time and again, Mr. Siddaramaiah has been somebody who has said that he's not interested in national politics, he's not interested to go to Delhi. So how will he really look at this option? If it was given to him, we'll know in the next few hours. But as of now, a couple of things that we are picking up with certainty is that there's not going to be any more round of meetings pertaining to the leadership in the national capital right now. Mr. Siddaramaiah is planning to fly back to Bengaluru, and you know, any sort of formal announcement of a decision on the Karnataka leadership, if it is going to come by, is not going to happen anytime now. It is going to happen only after the Rajya Sabha elections.
0: All right, Deepak, continue to stay with us. Deepak getting us details of the Chief Minister of Karnataka, Siddaramaiah, leaving Delhi any time now. Protocols are in place for the same. It is possible that the final decision on the next roadmap for the Congress Party in Karnataka will be decided post the Rajya Sabha polls. Very, very crucial for the Congress Party. Janendra also continues to join us from Delhi, where he has been tracking the Marathon Shikshar meeting that took place today. Janendra, Deepak hame bata rahe hain ki Mukhyamantri Siddaramaiah to ab kooch kar rahe hain, airport ki taraf Karnataka wapas ja rahe hain. To Baba ki bhavishyavani jo hai, puri tarike se sach nikal rahi hai ki abhi हाल में कोई मीटिंग नहीं होगी, अभी राज्यसभा चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि आगे की रणनीति तय की जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल बाबा, बिल्कुल इस बात पर कायम है। और देखिए, 8 जून जो मैं देख पा रहा हूँ नोटिफिकेशन राज्यसभा का, 8 जून है, 8 जून है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा, और 4 वैकेंसी है कर्नाटका में। अगर वहाँ पर 5 नॉमिनेशन हुए तब चुनाव की नौबत आएगी, और वोटिंग का जो डेट ऑफ पोल है वो 18 जून है। तो अगर 4 नॉमिनेशन हुए तब तो कोई चुनाव होगा ही नहीं, और अगर 5 नॉमिनेशन हुआ, बीजेपी ने 2 उम्मीदवार उतार दिए, तो फिर पोल होगा और वो फिर 18 जून को चुनाव जा करके तय होगा। तो क्या तब तक के लिए बाबा ये सब टल गया है?
3: मैं एक ही लाइन बोलूँगा जिससे कि स्थिति साफ हो जाएगी। यदि ये जो कांग्रेस के 3 नॉमिनेशन है, एक तो खड़गे साफ करेंगे, यदि एक डीके सुरेश जो कि डीके शिवकुमार के भाई हैं, यदि उनका नॉमिनेशन हुआ तो आप मान लीजिए कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। यदि डीके सुरेश के बदले यदि सिद्धरमैया साहब का हुआ, इसका मतलब चेंज है। तो आपको इस राज्यसभा का इलेक्शन से ही इंडिकेशन हो जाएगा।
2: एक तरीके से जो कहा है वेणुगोपाल ने कि हमने राज्यसभा की चर्चा की, तो एक किस्म से राज्यसभा की चर्चा में सारी चर्चा उसमें आ जाती है।
3: मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि एक जो डील की बात हो रही है, डील वर्ड अच्छा नहीं होता है, एक जो पॉलिटिकली जो सांत्वना की बात, जो कल से मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया रहेंगे, डीके सुरेश जो डीके के शिव कुमार के भाई हैं वो राज्यसभा आएंगे, और खड़गे जी आएंगे, और डीके शिव कुमार को एलिवेट किया जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम है, लेकिन मंत्रालय में अभी उनके पास 2 मंत्रालय, लघु सिंचाई विभाग है, इरिगेशन है, और बेंगलोर डेवलपमेंट है। क्या पता उन्हें होम दे दिया जाए, समझ गए, और उसके बाद ही रिसफल होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ वो कयास लगाने की ज़रूरत है। थोड़े दिनों की बात है, 20 दिन में ये आपको पक्का पता चल जाएगा।
2: चलिए, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि क्या चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। ये बाबा का मानना है और इनका मानना है कि कोई बदलाव के मूड में लीडरशिप नहीं है। डीके शिवकुमार को और इंतजार करना होगा, और संभवतः अगले कैबिनेट रिशफल में उनका ओहदा जो है वो थोड़ा और बढ़ सकता है पोर्टफोलियो के मामले में।
0: जी जैनेन्द्र और मनोरंजन भारती, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो द गेम ऑफ थ्रोन्स इन कर्नाटका ओनली कंटिन्यूज। नो फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन येट, बट वी विल बी ट्रैकिंग दैट स्टोरी वेरी वेरी क्लोजली टू द राज्यसभा पोल्स एंड ऑफ कोर्स द कैबिनेट रिशफल, इफ एट ऑल इट हैपेंस इन कर्नाटका। बट हियर इट्स टाइम टू टेक अ क्विक ब्रेक, बट नेशन वाइड एट 6 रिटर्न्स आफ्टर ब्रेक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में स्वागत कीजिए श्री भगवंत मान।
3: थैंक यू।
2: भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं, भगवंत मान कितने फैसले लेते
3: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं।
2: राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है?
3: कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है।
2: भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
3: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे।
2: फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों देगी?
3: जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियां पूरी हो रही हैं।
2: सरकार आपकी पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो।
3: पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है।
2: बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सीख फेस को आगे करेंगे। क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट। ठीक ठीक तो लगा लो,
3: इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
2: जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता है।
3: प्रॉपर्टीज उनकी डिमोलिश की हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया।
2: अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो क्या कहे?
3: जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्विशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
8: शुरू में देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
9: ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
10: वी हैव बीन फाइटिंग नॉनस्टॉप, we are not stopping until the justice is served.
11: Miss Singh, where is your son? Let me ask you that pointed question.
12: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
13: Breaking news coming in, Samar Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your
14: screen. Number
13: first on NDTV. NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case. Joining us live now for the first time is Rigendra Singh, senior advocate, appearing for Samar Singh.
15: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
13: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.
2: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
16: Really?
2: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us

0: है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और ये इसको रोकना अच्छी बात नहीं है। आपके दोस्त रहे हैं साथ में, आपने काम किया है, तीन फिल्मों के लिए आपने साइन किया था, और उस समय साइन किया था जब आपके पास आपकी फिल्में चल नहीं रही थी।
1: तो डॉन 3 की साइनिंग रणवीर सिंह ने की थी 2023 में, जब वो ऑलरेडी बहुत एक सुपर हिट स्टार थे. हाँ, मुझे आपसे अब ये पूछना है कि कोई मिडिल ग्राउंड नहीं था कहीं, कोई का तरीके का सल्यूशन के बारे में आपने नहीं सोचा ये नोटिस इशू करने से पहले?
0: प्रोड्यूसर बॉडी गिरने भी बहुत कोशिश की, मगर रणवीर सिंह की चुप्पी जो है वो साइलेंट मोड में चले गए, किसी से कांटेक्ट नहीं किए। फिर ये हालात हुए हैं कि भाई उनको उनको जगाया जाए, उनको बताया जाए कि इसको शांत रहकर चुप रह करके आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मिलना पड़ेगा, मिलने से ही सारे काम होते हैं। तो हमारा
1: अच्छा.
0: एक तरह से हमने मीडिया इसलिए बुलाया कि हमारे इस मैसेज पहुंच जाएगा उनके तक, यदि नहीं पहुंच रहा है तो उनको पहुंच जाए, ताकि वो कोई रास्ता निकाले, मिले जाए। कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी बात हो सकती है, और इसका सोल्यूशन निकलने में कोई टाइम नहीं लगेगा।
1: जी, आप कह रहे हैं कि इसके सल्यूशन निकले में कोई टाइम नहीं लगेगा. रणवीर सिंह आप चाहते हैं आके आपसे मिले. मुझे आपसे दूसरे सवाल ये पूछना है कि 400,000 वर्कर्स है आपके फोवाइस में. अब रणवीर सिंह को अगर आप बैन करते हैं, एक सुपरस्टार को अगर आप बैन करते हैं, तो उनके काम में कितना इफेक्ट पड़ेगा? वो जो सारे वर्कर्स, स्पॉट बॉय, कैमरा गाइज, उनके काम में आपको लगता नहीं फर्क पड़ेगा?
0: हमारे स्पॉट बॉय से लेकर के सुपरस्टार तक हमारे एसोसिएशन में आते हैं। इसमें डायरेक्टर आते हैं, इसमें कैमरामैन आते हैं, इसमें साउंड रिकॉर्डिंग्स आते हैं, इसमें मेकअप मैन आते
1: हाँ
0: हैं, लाइट मैन, सेटिंग
1: जी.
0: डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट आते हैं। वो हमें सपोर्ट करेंगे, हम हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम पहली बार प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। यदि हमारे आर्टिस्ट से कोई मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत, या उसका उनकी क्या डिमांड है हमें बताएं, तो हम उनके साथ खड़े हो जाएं। हम तो न्याय के साथ खड़े हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं है।
1: आपसे आखिरी सवाल, सल्यूशन क्या हो सकता है? आप बार बार कह रहे हैं कि आप चाहते हैं रणवीर सिंह अपनी चुप्पी तोड़े और आपसे आके मिले, बट क्या सल्यूशन है? क्या आप चाहते हैं कि वो कॉम्पनसेशन दे फरहान अख्तर को ₹45 करोड़ का?
0: हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ बैठे, फरहान अख्तर के साथ, फेडरेशन के साथ बैठे, आए बताएं अपनी प्रॉब्लम कि हमारे हम आज फिल्म इस तरह की नहीं करना चाहते हैं, कोई अच्छी फिल्म करना चाहते हैं। तो भविष्य में बहुत कुछ है, उन्हीं के साथ आगे भी काम हुआ किया जा सकता है।
1: जी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए NDTV पे. ऑल राइट, वी नाउ शिफ्टिंग फोकस टू कर्नाटका गेम ऑफ थ्रोन्स एंड वी हैव सम बिग ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन. सिद्धरमैया has invited ministers for a breakfast meeting on Thursday morning. That's May 28th. Sources telling us that he's likely to resign as the chief minister on that very day. Congress Karnataka in charge, Randeep Surjewala, will arrive in Bengaluru tomorrow afternoon. And Siddha and DKS will appear together at an event held at the State Congress office in Bengaluru tomorrow to mark Jawaharlal Nehru's death anniversary. I'm going to go across to my colleague Janendra for more on this. Janendra, now we are learning that that Siddaramaiah has invited a breakfast meeting on May 28th. Apparently, that's the day on which he's going to resign.
2: Yes, on Thursday he has invited his ministers for a breakfast meeting at his residence, and sources are indicating that he is also likely to resign on the same very day. Before resigning, there is a protocol also to convene ministers, a cabinet just before resigning. So whether after the cabinet, after the breakfast meeting, there will be there may be a last cabinet meeting of Siddaramaiah, and after that he may tender his resignation. He will meet governor and tender his resignation. He may be asked by the governor to continue on the post till the next chief minister's appointment, and after that the Congress Legislative Party meeting will take place on a certain date, and then new chief minister, who is likely

0: एप्लीकेशंस हो सकते हैं रणवीर सिंह के ऊपर?
1: हमने एक महीने से रणवीर सिंह को ट्राई कर रहे थे, हम उनको 3 लेटर लिखे, रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप टाइम निकालें और हमारे साथ बैठ जाएं, प्रोड्यूसर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और ये इसको रोकना अच्छी बात नहीं है। आपके दोस्त रहे हैं, साथ में आपने काम किया है, 3 फिल्मों के लिए आपने साइन किया था और उस समय साइन किया था जब आपके पास आपकी फिल्में चल नहीं रही थी।
0: तो डॉन 3 की साइनिंग रणवीर सिंह ने की थी 2023 में, जब वो ऑलरेडी बहुत एक सुपर हिट स्टार थे। हाँ, मुझे आपसे अब ये पूछना है कि कोई मिडिल ग्राउंड नहीं था कहीं, कोई का तरीके का सल्यूशन के बारे में आपने नहीं सोचा ये नोटिस इशू करने से पहले?
1: प्रोड्यूसर बॉडी गिल्ट ने भी बहुत कोशिश की, मगर रणवीर सिंह की चुप्पी जो है वो साइलेंट मोड में चले गए, किसी से कॉन्टेक्ट नहीं किए। फिर ये हालात हुए हैं कि भाई उसको उनको जगाया जाए, उनको बताया जाए कि इसको शांत रहकर चुप रह करके आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मिलना पड़ेगा, मिलने से ही सारे काम होते हैं। तो हमारा अच्छा, एक तरह से हमने मीडिया इसलिए बुलाया कि हमारे इस मैसेज पहुंच जाएगा उनके तक, जी नहीं पहुंच रहा है तो उनको पहुंच जाए ताकि वो कोई रास्ता निकाले, मिले जाए। कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी बात हो सकती है और इसका सोल्यूशन निकलने में कोई टाइम नहीं लगेगा।
0: जी, आप कह रहे हैं कि इसके सोल्यूशन निकले में कोई टाइम नहीं लगेगा, रणवीर सिंह आप चाहते हैं आके आपसे मिले। मुझे आपसे दूसरा सवाल ये पूछना है कि 400,000 वर्कर्स है आपके फोवाइस में, अब रणवीर सिंह को अगर आप बैन करते हैं, एक सुपरस्टार को अगर आप बैन करते हैं, तो उनके काम में कितना इफेक्ट पड़ेगा? वो जो सारे वर्कर्स, स्पॉट बॉय, कैमरा गाइज, उनके काम में आपको लगता नहीं फर्क पड़ेगा?
1: हमारे स्पॉट बॉय से लेकर के सुपरस्टार तक हमारे एसोसिएशन में आते हैं। इसमें डायरेक्टर आते हैं, इसमें कैमरामैन आते हैं, इसमें साउंड रिकॉर्डिंग्स आते हैं, इसमें मेकअप मैन आते हैं, लाइट मैन, सेटिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट आते हैं। वो हमें सपोर्ट करेंगे, हम हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम पहली बार प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। यदि हमारे आर्टिस्ट से कोई मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत, या उसका उनकी क्या डिमांड है हमें बताएं तो हम उनके साथ खड़े हो जाएं। हम तो न्याय के साथ खड़े हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं।
0: आपसे आखिरी सवाल, सल्यूशन क्या हो सकता है? आप बार बार कह रहे हैं कि आप चाहते हैं रणवीर सिंह अपनी चुप्पी तोड़े और आपसे आके मिले, बट क्या सल्यूशन है? क्या आप चाहते हैं कि वो कॉम्पेंसेशन दे फरहान अख्तर को ₹45 करोड़ का?
1: हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ बैठे, फरहान अख्तर के साथ, फेडरेशन के साथ बैठे, आए बताएं अपनी प्रॉब्लम कि हमारे, हम आज फिल्म इस तरह की नहीं करना चाहते हैं, कोई अच्छी फिल्म करना चाहते हैं, तो भविष्य में बहुत कुछ है, उन्हीं के साथ आगे भी काम हुआ किया जा सकता है।
0: जी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए NDTV। All right, we're now shifting focus to Karnataka, Game of Thrones, and we have some big breaking news coming in. Siddaramaiah has invited ministers for a breakfast meeting on Thursday morning. That's May 28th. Sources telling us that he's likely to resign as the chief minister on that very day. Congress Karnataka in charge, Randeep Surjewala, will arrive in Bengaluru tomorrow afternoon, and Siddha and DKS will appear together at an event held at the State Congress Office in Bengaluru tomorrow to mark Jawaharlal Nehru's death anniversary. I'm going to go across to my colleague Janendra for more on this. Janendra, now we are learning that Siddaramaiah has invited a breakfast meeting on May 28th. Apparently, that's the day on which he's going to resign.
2: Yes, on Thursday, he has invited his ministers for a breakfast meeting at his residence, and sources are indicating that he is also likely to resign on the same very day. Before resigning, there is a protocol also to convene ministers, a cabinet just before resigning. So whether after the cabinet, after the breakfast meeting, there will be there may be a last cabinet meeting of Siddaramaiah, and after that he may tender his resignation. He will meet governor and tender his resignation.